सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन

जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: फेसबुक ने स्काई व्हाट्सएप इन लाइफ मान मोड़ काम इतनो आराम सो स्टार्टअप योर डे विद रेनबो फन डे। रेनबो फन डे म्यूजिकल साथ रियल लाइफ बात सिनेमा नाटक भटकंती खास स्टार्टअप योर डे।

0: असली डायमंड की असली चमक, आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट।
1: आज ही विजिट कीजिए पीएन गाडगिल शोरूम, रचना संसद, प्रभा देवी, सृष्टि प्राइम, गोखले रोड, ठाणे, फड़के रोड, डोंबिवली और बदलापुर।
0: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी, शाइन नेचुरली।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: आकाशवाणी FM रेनबो।
7: श्रोत्या, 7:26 आहेत आणि यानंतर प्रसारित करत आहोत कार्यक्रम अज्ञात मुंबई।

समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों

0: में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री

0: के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
1: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: NTA is committed. NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
4: And we will ensure that the examination is conducted in a flawless manner.
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।

0: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्य की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है, क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई, जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of 3-match series in Lucknow this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avion, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. Prime Minister said, "It is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade." Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. The French city of Avion remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase, with India participating.

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
2: रीवा डायमंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ पीएनजी एंड सन्स प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर
3: असली डायमंड की असली चमक आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट
2: आज ही विजिट कीजिए पीएन गाडगिल शोरूम रचना संसद प्रभा देवी सृष्टि प्राइम गोखले रोड ठाणे फड़के रोड डोंबिवली और बदलापुर
3: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी शाइन नेचुरली
4: हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार कैसे हैं आप सब 107.1 FM रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन एयर पे बिल्कुल लाइव हमारे मुंबई स्टूडियो से मैं हूं ममता सहगल आपके साथ और बातें होंगी आज मस्त मुंबई में मुंबई के मतवालों की। मुंबई एक ऐसा शहर जहां सुबह की शुरुआत अलार्म से नहीं बल्कि लोकल ट्रेन के हॉर्न से होती है जहां किसी के लिए लोकल सिर्फ घर से ऑफिस तक पहुंचने का जरिया है तो किसी के लिए ये दोस्ती की जगह है किसी के लिए यादों का डिब्बा और किसी के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा स्कूल क्योंकि मुंबई की लोकल में सिर्फ यात्री सफर नहीं करते यहां किससे सफर करते हैं तो आइए आज मुंबई के मतवालों में आपको सुनाएंगे कुछ ऐसे ही किस्से मुंबई के मतवालों की अपनी मुंबई लोकल वाली कहानियां। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक और खूबसूरत से गीत के साथ।

बिल्कुल, आप सबकी आवाज़ हूँ मैं, आपके दिलों की आवाज़ हूँ मैं। कई बार आपके दिलों की जो बातें आप करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उसकी आवाज़ बन जाती हूँ मैं। और ऐसे ही हमें ढेर सारी मैसेजेस लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ज़रा चलते हैं लेडीज़ डिब्बे की ओर, हमारी लोकल ट्रेन में, जहाँ सफ़र के साथ साथ चलती हैं ब्यूटी टिप्स, घर के नुस्खे, बच्चों की पढ़ाई से लेके ऑफिस की परेशानियों तक सब कुछ, कुछ नई रेसिपीज़, कुछ घरेलू नुस्खे जिसमें कि खांसी, सर्दी और न जाने किस किस के बारे में बातें होती हैं। कभी कभी नई साड़ी भी दिखाई जाती है, कभी कोई घर का बनाया हुआ अचार और पराठे खिलाता है तो सारे डब्बे में ऐसी खुशबू फैल जाती है कि उफ मज़ा ही आ जाता है। और अगर कोई पहली बार सफ़र कर रही है तो उसे ऐसा लगता है कि 10 मिनट में पूरा का पूरा डब्बा ही अपना परिवार बन गया है। कॉलेज और स्कूल के बच्चे जो ट्रैवल करते हैं, लेडीज़ कंपार्टमेंट में ट्रैवल करने वाली लेडीज़ जो होती हैं, वो उनका अपने बच्चों की तरह ध्यान रखती हैं। कोई अगर गेट पे खड़ा हुआ दिख जाए तो उसे बुला के अंदर बिठाती हैं। फिर सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी होती है इसलिए, तो फिर चाहे बच्चा बुरा माने या नहीं, बच्चों को बुला के अंदर सीट पर बिठा दिया जाता है। क्योंकि मुंबई की महिलाएं जानती हैं कि सफ़र छोटा हो या लंबा, साथ हो तो रास्ता आसान हो जाता है, प्यार हो तो हर मुश्किल दूर हो जाती है, और ज़रा सी सावधानी से बहुत से लोगों की जान बचाई भी जा सकती है। तो ऐसा होता है हमारी आमची मुंबई की लोकल ट्रेन्स का सफ़र।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक 23 डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: आकाशवाणी FM रेनबो।
5: वेलकम बैक, 107.1 FM रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं बिल्कुल लाइव हमारी प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन एयर पर, दुनिया के और देश के किसी भी कोने से। तो चलिए मुंबई लोकल की खास बात आपको बताती हूँ। यहाँ टैलेंट को अपना मंच नहीं ढूंढना पड़ता, मंच खुद ब खुद चलकर आ जाता है। क्या आप इस बात का मतलब समझे? अगर नहीं तो बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और अगर समझ गए हैं तो भाई क्या बात है, लगता है आप भी उन्हीं टैलेंटेड लोगों में से एक हैं।

बिल्कुल सोने लगते हैं। यहाँ के जितने भी टैलेंट है बड़े ही खास लगते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मुंबई की लोकल ट्रेन में टैलेंट को मंच नहीं ढूंढना पड़ता, बल्कि मंच खुद ब खुद चल कर आता है, क्योंकि यहाँ जिसका मन आता है वो गाना शुरू कर देता है, लोग ताली बजाकर उसका साथ देना शुरू करते हैं। और आजकल तो न जाने कितना कुछ हो रहा है, बल्कि लोग लोकल ट्रेन में रील्स वगैरह बनाने लग गए हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि चलती हुई लोकल ट्रेन में इस तरह से डांस वगैरह करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। हमारे जितने भी तमाम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स जो लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि प्लीज ऐसा करना जो है अवॉइड कीजिए। बातें कीजिए, कविताएं सुनाइए, गाना सुनाइए, किस्से सुनाइए, स्टैंड अप कॉमेडी आप कर सकते हैं उसके अंदर दायरों में रहते हुए। तो ये सब चीजें जो है आप वहां कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई स्पेशल स्टेज पर जाने की जरूरत नहीं है, अपनी जगह पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं। ये डांस वांस थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, हालांकि बहुत खूबसूरत लगता है जब कोई डांस करता है, सब उसको घेर के खड़े हो जाते हैं ऑल, लेकिन फिर भी सुरक्षा के लिहाज से ये चीज गलत है। तो आप ये चीज करना अवॉइड कीजिए, बाकी कविता सुनाइए, गीत सुनाइए, स्टैंड अप कॉमेडी कीजिए, किस्से कहानियां सुनाइए, नरेशन कीजिए, ये सब चीजें बहुत खूबसूरत लगती हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको कोई स्पेशल प्रिपरेशन की, वेलकम की जरूरत नहीं होती है, आप शुरू कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और आपके दोस्तों के साथ साथ अजनबी भी आपसे मिलने लग जाते हैं, आपके साथ चलने लग जाते हैं, और फिर वो कहते हैं ना कि मंजिल तक जो था कारवा आगे बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, सफर आगे चलता गया, कुछ इस तरह की फीलिंग जो है वो शुरू हो जाती है। तो बस ये बातें जरा ध्यान में रखिएगा मुंबई के मतवालों।

0: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
2: रीवा डायमंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ पीएनजी एंड सन्स प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर
3: असली डायमंड की असली चमक आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट
2: आज ही विजिट कीजिए पीएन गाडगिल शोरूम रचना संसद प्रभा देवी सृष्टि प्राइम गोखले रोड ठाणे फड़के रोड डोंबिवली और बदलापुर
3: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी शाइन नेचुरली

हरिहरन की आवाज़ में खूबसूरत सी नज्म गज़ल आप जो चाहे कह सकते हैं वो आपने सुना, और ये उन पहले प्यार की उन आँख मिलाने वाली लोगों के लिए है जिनको लोकल ट्रेन में अक्सर मोहब्बत हो जाती है। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आती और जाती ट्रेनों में एक नज़र का प्यार भी हो जाता है, और फिर ऐसा लगता है कि काश एक बार फिर से वो नज़र आ जाए, काश एक बार फिर से दीदारे यार हो जाए। ऐसा होता है अक्सर, एक बार बस ट्रेन क्रॉस होती है, चाहे आप लड़के हों या लड़की हों, कभी कभी किसी से पहली नज़र का प्यार हो जाता है, और फिर अक्सर उसी वक्त उसी समय पर हम कोशिश करते हैं जाने की कि शायद शायद एक झलक फिर से दिख जाए, शायद एक नज़र फिर से दिख जाए उसी की जिसने हमें दीवाना कर दिया है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? वैसे कभी कभी जिंदगी में ऐसा दिन भी आता है जब वही लोकल, वही रास्ता, वही लोग, लेकिन सफर आखिरी होता है। एक मुंबईकर ने अपने शहर छोड़ने से पहले अपनी लोकल ट्रेन वाली मंडली के साथ अपने आखिरी सफर को यादगार बनाया था। ऐसा बहुत सारे किस्सों में हुआ है, बहुत सारे लोगों ने हकीकत में ये किया है, क्योंकि कई बार लोग ट्रांसफरेबल जॉब्स में होते हैं तो यहाँ से चले जाते हैं तो उनका वो साथ जो है छूट जाता है, लेकिन अब तो बहुत सारे जरिए हैं एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। रोज़ रोज़ एक साथ ट्रैवल करने से आपके जो आस पास आपके साथ जो लोग ट्रैवल करते हैं वो आपके दोस्त बन जाते हैं। सोचिए, जिस ट्रेन में हम रोज़ जल्दी पहुंचने की चिंता में चढ़ते हैं वही ट्रेन हमें कुछ ऐसे रिश्ते दे जाती है जो ज़िंदगी भर हमारे साथ रह जाते हैं।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
3: हर घर

और ये फीलिंग किसी ऐसे बंदे के लिए बयां करना जो लोकल ट्रेन में कभी ट्रैवल ही नहीं करता, ये भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोकल ट्रेन में ट्रैवल करके जो खुशी की फीलिंग आती है वो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो उस ट्रेन में ट्रैवल करता हो या जिसने कभी उस ट्रेन में ट्रैवल किया हो। आई एम श्योर आप में से जो भी लोग मुंबई छोड़कर दूर दूर चले गए हैं वो मुंबई की इस लोकल ट्रेन वाली फीलिंग को ज़रूर मिस करते होंगे। फिलहाल तो रजनीकांत पाटिल जी, महेश भाटकर जी, सुषमा शेट्टे जी, विजेंद्र घटोल जी, वैदेही जी, शुभलक्ष्मी मस्तकर जी, पंकज मोहर जी, प्रमोद खरकनिस जी, प्रमोद चिंचोलकर जी, प्रवीण भाटकर जी, फिरोज सिगनपुरिया जी, प्रणव शिंदे जी, महेश बोहराना जी, हितेंद्र दास जी और प्रदीप अनंत कृष्णन जी, थैंक यू सो मच सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी हौसला अफजाई करने के लिए और हमें ये बताने के लिए कि हम आपका जो मनोरंजन करने का दिल बनाकर आए थे उसे पूरी तरह से हम जो है अपने वायदे को पूरा कर रहे हैं। प्रणव शिंदे जी ने एक बहुत खूबसूरत सी कविता लिखकर भेजी है। जैसा कि मैंने कहा कि टैलेंट को कोई मंच नहीं चाहिए होता है, हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही है कि अगर आप कुछ हमारे साथ शेयर करते हैं तो वो हम हमारे श्रोताओं के साथ जरूर शेयर करते हैं। तो प्रणव शिंदे जी लिखते हैं, रुकती नहीं ये लोकल, थमती नहीं ये मुंबई कभी, इसके मतवाले राहियों ने हार मानना सीखा ही नहीं, पटरियों की गूंज में छुपा मंजिलों का पैगाम है, हम शहर के हर मुसाफिर को हमारा सलाम है, यहां अजनबी भी सफर में हम सफर बन जाते हैं, सुख दुख के किस्से एक ही डिब्बे में सिमट जाते हैं, डिब्बे की धक्का मुक्की में भी एक अलग ही प्यार है, मुंबई की इस लाइफ लाइन पर हर राही को एतबार है। बहुत खूब, बहुत खूब, और कितना सच लिखा है आपने, उफ मजा ही आ गया। One more time.

0: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, 107.1 FM रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। सुबह के ठीक 10 बज चुके हैं। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के समाचारों की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं

को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। समाचारों में आगे है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापारिक हस्तियों, कार्यकारी अधिकारियों, निवेशकों और नवप्रवर्तकों को भारत के साथ नवाचार से संचालित एक उज्जवल और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में सहयोग के लिए आमंत्रित किया है। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि पिछले 3 दिन की उपलब्धियां भारत फ्रांस नवाचार साझेदारी की अपार क्षमता को दर्शाती हैं। समाचारों के अंत में खेल जगत से समाचार। फीफा विश्व कप में नॉर्वे ने आज इराक को 4-1 से हरा दिया। नॉर्वे के एर्लिंग हॉलैंड ने 2 गोल किए। इससे पहले फ्रांस ने कल सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के बीच मैच में भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। आप बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो की मुंबई प्रसारण सेवा के साथ, जिसे आप सुन रहे हैं प्रसार भारती की ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर।

वेलकम बैक 107.1 FM रेनबो। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से और साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन एयर पर देश और दुनिया के कोने कोने से। और आपके मैसेजेस भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हमारी आवाज और हमारा हर इमोशन आप तक बखूबी पहुंच रहा है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर कोई क्या करेगा तो आप क्या कहेंगे? तस्वीरें खींचेगा, सेल्फी खींचेगा, तिरंगा लहराएगा, अपनी खुशी को जाहिर करेगा। लेकिन भारत की एक बेटी ने कुछ ऐसा किया है जिसने सबका दिल जीत लिया है। आज की कहानी एक ऐसी ही बेटी की है जिसने एवरेस्ट पर ना सिर्फ तिरंगा लहराया बल्कि भारतीय संस्कृति की खूबसूरत झलक भी दुनिया को दिखाई। क्या आप जानते हैं ये कौन है? नहीं तो हम हैं ना आपके साथ, आपके पास, हर पल, हर लम्हा, हर वक्त। बने रहिए हमारे साथ।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
2: रीवा डायमंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ पीएनजी एंड सन्स प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर
3: असली डायमंड की असली चमक आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट
2: आज ही विजिट कीजिए पीएन गाडगिल शोरूम रचना संसद प्रभा देवी सृष्टि प्राइम गोखले रोड ठाणे फड़के रोड डोंबिवली और बदलापुर
3: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी शाइन नेचुरली

जवाब तो बहुत सारे आए, लेकिन सही जवाब का इंतजार मुझे अब तक था जो मुझे नहीं आया। तो चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ कि भारत की ये कौन सी बेटी है जिसने भारतीय संस्कृति की खूबसूरत झलक दुनिया को दिखाई उस बर्फ से ढके हुए एवरेस्ट के सामने। जी हाँ, मुंबई की रहने वाली 22 साल की सानिका शाह एक ऐसी युवा पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी करके एक शानदार उपलब्धि हासिल की। लेकिन सानिका की इस यात्रा में एक पल ऐसा आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि एवरेस्ट पर बहुत लोग जाते हैं। अब बहुत लोगों का सपना होता है एवरेस्ट को फतेह करना, तो बहुत लोग जाते हैं, कहीं कर पाते हैं, कहीं नहीं, कहीं किस्से बन जाते हैं, कहीं कहानी और कहीं कहीं कोई इतिहास बन जाता है। तो सानिका ने भी एक ऐसा ही इतिहास जो है वो रच डाला है। एवरेस्ट बेस कैंप, जहां हर कदम पर सांस लेना भी चुनौती होता है, जहां पर्वतारोही सिर्फ अपने लक्ष्य और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं, वहीं सानिका ने क्या किया ये काबिले तारीफ है। क्या किया सानिका ने, मैं आपको बताऊंगी बस कुछ ही देर में।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
4: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
3: कॉस्मॉस को

Interactive Bank, enriching life. वेलकम बैक 107.1 एफएम रेनबो, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ, और साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन एयर पर, देश और दुनिया के किसी भी कोने से बिल्कुल लाइव मुंबई स्टूडियोज से। तो हम बात कर रहे थे सानिका की, तो सानिका ने क्या किया वो मैं आपको बताती हूँ। जब सानिका पहुंची अपने बेस कैंप पर, एवरेस्ट बेस कैंप पर, जहाँ पर हर कदम पर सांस लेना भी एक चुनौती होता है, वहाँ पर सानिका ने पहनी अपनी भरतनाट्यम की पोशाक, सजाया अपना पारंपरिक श्रृंगार और बर्फीली जमीन पर किया भारतीय शास्त्रीय नृत्य। जी हाँ, सोचिए, एक तरफ हजारों फीट ऊंचे हिमालय की विशालता, दूसरी तरफ भारत की हजारों साल पुरानी कला परंपरा, एक अद्भुत संगम साहस और संस्कृति का। सानिका के लिए ये सिर्फ एक डांस परफॉर्मेंस नहीं था, बल्कि एवरेस्ट के प्रति उनका भावनात्मक समर्पण था। उन्होंने बताया कि उनका ये सपना था कि वो एवरेस्ट के चरणों में भरतनाट्यम समर्पित करें। कितनी खूबसूरत बात है ना। हम अक्सर सोचते हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपनी पसंदीदा चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है, लेकिन सानिका की कहानी हमें ये बताती है कि हमारी पहचान, हमारी कला, हमारी संस्कृति हमारे सपनों के साथ साथ चल सकती है। एक पर्वतारोही भी अपने हाथों में रस्सी पकड़ सकती है और साथ ही साथ पैरों में नृत्य की लय भी पकड़ सकती है।

भाई क्या बात है, सानिका की कहानी हमें ये बताती है कि एक छोटी सी डायरी में लिखा गया सपना, कुछ सालों की मेहनत और फिर वो सपना दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पूरा करना, ये हमें ये याद दिलाता है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, दिल में विश्वास भी चाहिए, क्योंकि जब इरादे मजबूत हों तो कदम खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेते हैं।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: रेवा डायमंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ पीएनजी एंड सन्स प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर।
3: असली डायमंड की असली चमक, आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट।
2: आज ही विजिट कीजिए पीएन गाडगिल शोरूम, रचना संसद, प्रभा देवी, सृष्टि प्राइम, गोखले रोड, ठाणे, फड़के रोड, डोंबिवली और बदलापुर।
3: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी, शाइन नेचुरली।

तो भाई सलाम है सानिका शाह के जज्बे को, जिन्होंने साबित कर दिया कि ऊंचाइयां सिर्फ पहाड़ों की नहीं होती, ऊंचाइयां होती हैं सोच की, हौसले की और सपनों की। मैं हूं ममता सहगल, आपसे चाहूंगी इजाजत। बस यही कहना चाहूंगी कि याद रखिए, सपने जब जुनून बन जाते हैं तो दुनिया की कोई भी चोटी बहुत दूर नहीं रहती। आपके लिए ऐसी कुछ प्रेरणादायक कहानियां, सच्ची कहानियां मैं लेकर आती रहूंगी यहीं पर। लेकिन फिलहाल तो वैशाली आ चुकी हैं स्टूडियो में अपने साथ बहुत सारी मनोरंजन की बातों का पिटारा लेकर, और गीत तो मैं देख रही हूं बहुत कमाल धमाल उन्होंने क्यों किए हुए हैं, बड़ा ही मजा आएगा। तो आप भी उन्हें सुनिए, मैं भी इनके साथ रहती हूं, साथ साथ रहेंगे, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ इस सफर को खूबसूरत बनाएंगे। मेरी और आपकी अगली मुलाकात तक के लिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ दिनों का, कुछ लम्हों का, कुछ मुलाकातों का इंतजार, और फिर होगी मेरी और आपकी खूबसूरत मुलाकात। ठीक 11 बजे समाचार होंगे हिंदी में हमारे मुंबई केंद्र से, और उसके उस पार होगा कार्यक्रम ब्रेक फ्री वैशाली के साथ। तो फिलहाल मेरे और आपके इस सफर को एक खूबसूरत सफरनामा का जामा पहना देते हैं इस गीत के साथ। तो चलिए, हम तो चले, आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी

0: Lani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 11:14 हो चुके हैं और आइए इस घंटे के मुख्य समाचारों पर नजर डालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, मिस्र, जापान और दक्षिण कोरिया के नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता की। भारत कनाडा संबंधों, व्यापार और रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी। ब्रिटेन के साथ शिक्षा और व्यापार साझेदारी की समीक्षा हुई। यूएई के साथ ऊर्जा, निवेश और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा हुई। अन्य नेताओं के साथ भी व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है, जिसके कारण राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। कल राज्य मंत्रिमंडल के सामने पेश की गई फसलों की स्थिति की समीक्षा के अनुसार 1 से 15 जून के बीच महाराष्ट्र में 103.8 मिलीमीटर की सामान्य औसत बारिश के मुकाबले 27.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मुख्य समाचारों में आगे, अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताहांत तक खुल जाएगा। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% से गिरकर

$78.66 हो गई है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। मुख्य समाचारों के अंत में, क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। इसी के साथ इस घंटे के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। कार्यक्रम ब्रेक फ्री के लिए बने रहे 107.1 FM रेनबो पर।

दोस्तों, जिंदगी के बारे में कितनी ही बातें हैं, है ना। कभी कभी जिंदगी एक भारी बोझ सी लगने लगती है। हर दिन की भागदौड़, उम्मीदों का दबाव और खुद को साबित करने की जंग, इस सब के बीच कभी ऐसा लगा है कि बस कहीं धरती के किसी कोने, पहाड़ी या नदी के कोने, या किसी चोटी पर समुद्र के किनारे जाकर बस क्षितिज को देखते हुए जोर से चलाए। किसी के ऊपर नहीं, अपने पर भी नहीं, बस अपने अंदर की उस घुटन, पीड़ा और दर्द को खुले आसमान पर खाली कर दे। होता है ना ऐसा, लगता है ना ऐसा कि कोई दिन हो तब जाकर ये करें। आज ब्रेक फ्री में यही करने का जो दिल करता है और बाकी सारी बातें जो दिल करता है यही होने वाली है, यानी कि दिल से दिल तक बातें होंगी 107.1 FM रेनबो पर ब्रेक फ्री में। बने रहे, सुनते रहे, मुस्कुराते रहिए और सोचिए क्या कुछ हो सकता है जिंदगी में।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: रेवा डायमंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ PNG एंड सन्स प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर।
4: असली डायमंड की असली चमक, आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट।
3: आज ही विजिट कीजिए PN गाडगिल शोरूम, रचना संसद, प्रभा देवी, सृष्टि प्राइम, गोखले रोड, ठाणे, फड़के रोड, डोंबिवली और बदलापुर।
4: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी, शाइन नेचुरली।
5: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
6: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
5: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 एफएम रेनबो और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो को न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर और एफएम पर भी। तो दोस्तों भाई ब्रेक फ्री में हम कई सारी बातें कर रहे थे। हाँ, और ये बातें जो हैं असल जिंदगी रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। देखिए प्रेरणादायक कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है सुनने को, लेकिन मुझे पता है आप में से कई सारे लोग

होंगे जो सोचते होंगे कि भाई ये सारी चीजें मोटिवेशन इत्यादि सारा कुछ तो सही है, लेकिन क्या करे जब दिल में दर्द उठता है। ये वो आवाज है दोस्तों जो हम सबके अंदर कहीं दबी रह जाती है। रोजमर्रा की जिम्मेदारियों ने हमें इतना बांध दिया है कि हम खुद को ही भूल गए हैं। हम मुस्कुराते हैं, काम करते हैं, दुनिया के लिए सब ठीक है ऐसा दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक खामोश तूफान चल रहा होता है। आखिर क्यों, क्या गलत है अगर हम कभी थक जाए? क्या गलत है अगर हम कभी अकेले में रोना चाहे? उस पल जब आप किसी ऊंची चट्टान पर खड़े होकर समुद्र की लहरों में अपनी चीख मिला देते हैं तो वो सिर्फ एक चिल्लाहट नहीं होती वो आपके अंदर की सदियों पुरानी फ्रस्ट्रेशन, वो ठहरा हुआ गुस्सा और वो अनकहा दर्द होता है जो आजाद हो रहा होता है। पर हाँ, कभी कभी अगर दर्द का इस तरह से आप इजहार करें तो ठीक है, बस कभी कभी। ये क्यों, और बातें होंगी, बने रहे। मैं हूं वैशाली, आप सभी के साथ बनी रहूंगी दोपहर के 2 बजे तक। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: रेवा डायमंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ पीएनजी एंड सन्स प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर।
3: असली डायमंड की असली चमक, आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट।
2: आज ही विजिट कीजिए पीएन गाडगिल शोरूम, रचना संसद, प्रभा देवी, सृष्टि प्राइम, गोखले रोड, ठाणे, फड़के रोड, डोंबिवली और बदलापुर।
3: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी, शाइन नेचुरली।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, ब्रेक फ्री चल रहा है। दोस्तों, बात हम कर रहे थे कुछ देर पहले उसके बारे में जो सभी के दिल में बसती है बात, और वो है बात ऐसी कि दिल का दर्द, तनाव, सारा फ्रस्ट्रेशन निकालने की बात। दोस्तों, कभी कभी खुद को हल्का करने के लिए ये चीख जरूरी होती है, जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था कि कभी कभी मन करता है कि किसी पहाड़ की चोटी पर समुद्र किनारे जाकर भाई चीख दे और सारा दर्द, सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा प्रेशर जो है हल्का कर दें और उस आसमान पर, उस समंदर पर डाल दें। पर आपसे मैंने कहा था ये कभी कभी ही करना, हमेशा के लिए ये अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, बात कई सारी करने वाली हूं आपसे इस चीख के बारे में। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, बल्कि खुद को खुद से वापस मिला देती है। तो आज अभी इस वक्त मैं आपसे यही कहूंगी कि अपनी भावनाओं को कैद मत कीजिए। अगर दर्द हो तो उसे महसूस कीजिए और इस खुले आसमान के हवाले कर दीजिए। पर कभी कभार, हाँ, बार बार कह रही हूं, बताऊंगी क्यों। बाकी समय छोटी बड़ी चीजों में अपना रिलीज ढूंढिए आप। कभी कभार कहीं जाकर चीखने, चिल्लाने का, खुद को जो है बिल्कुल हल्का करने का मन करे, ये और बात है, पर डेली बेसिस पर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये किसी न किसी पर निकलेगा, किसी इंसान पर, किसी और चीज पर। अब ये रिलीज कैसे पाना है, इसके बारे में भी आपको बताने वाली हूं। एक बात तो आप सभी जानते हैं और बखूबी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है और इस साल का थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। और योग का नाम मैं क्यों ले रही हूं, आप समझ रहे हैं कि ये अंदर की जो चीख है, ये अंदर का दर्द है, तड़प है, तकलीफ है, ये योग से दूर हो सकता है। और दोस्तों, योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, योग हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा की अमूल्य देन है। नियमित योग से शरीर में ऊर्जा, मन में शांति और जीवन में सकारात्मकता आती है। तो सकारात्मक रहिए जीवन में, और इसके लिए योग कीजिए। और कभी कभी मन करे तो चिल्ला दीजिएगा किसी पर नहीं, बल्कि उस आसमान पर, उस धरती के किसी कोने पर, उस हवा पर और उन बातों पर जो आपको परेशान करती हैं। लेकिन हमेशा नहीं, रोज नहीं, रोज के लिए पता है बहुत ही कमाल की चीज़ है आप सभी के लिए, जो है योग।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल 0 आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल 0 आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर

आप सुन रहे 107.1 FM रेनबो और हमारे श्रोता हमसे जुड़े हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और FM पर भी। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है दोस्तों, मैं हूं वैशाली और आप सभी साथ बनी रहूंगी दोपहर के 2 बजे तक। तो बात ब्रेक फ्री में हो रही थी, ब्रेक फ्री करने की, अपने दर्द, फ्रस्ट्रेशन और ऐसे इमोशन से जो बहुत ज़्यादा आपको तनाव में रखते हैं। और हाँ, जैसे मैंने कहा, अपने दिल को कभी कभार खाली कर देना उस खुले आसमान पर, ये तो ठीक है, ये जायज़ है, ये बनता है, पर अगर लगातार आप योग करेंगे तो इन सारी चीजों की जरूरत शायद आपको नहीं पड़ेगी। दोस्तों, कभी कभी खुद को हल्का करने के लिए ये चीख जरूरी होती है, ऐसा मैंने आप सभी से कहा। और भाई, वो चीख जो किसी का नुकसान भी नहीं करती लेकिन आपको एक रिलीज देती है। तो दोस्तों, अगर आप तन्हा हैं तो अच्छे दोस्त बनाइए, सिर्फ दुख दर्द बांटने के लिए नहीं बल्कि खुलकर हंसने के लिए। अगर आप हुनरमंद हैं तो अपने टैलेंट को रीडिस्कवर कीजिए, वर्कशॉप में भाग लीजिए या वर्कशॉप कंडक्ट कीजिए। खुशियों का कोई ठोस ठिकाना नहीं होता दोस्तों, वो हमारे अंदर ही होती हैं। कभी कभी हमारी मानसिक स्थिति अनुसार दुख सुख आते हैं। कभी आपको लगा है कि वो काल्पनिक है, वास्तविक नहीं। हाँ, हमारा मन कभी कभी दुख को क्रिएट भी करता है। जब भी वास्तव में तनाव महसूस हो, बस खुद को भूल जाइए, भुला दीजिए खुद को, कोई अच्छी सी किताब में खो जाइए। अब आप कुछ समय के लिए अपने आप को इस वास्तविक दुनिया से बाहर निकाल लाइए और आप उस डिप्रेसिंग मूड से भी बाहर निकलेंगे, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो। ये अच्छी किताब पढ़ने से हो, या अच्छी फिल्म देखने से, या फिर पेंटिंग करने से, या फिर कोई वाद्य यंत्र बजाने से हो, या फिर दिल खोलकर बाकी से नाचने से हो, आप अपने आप को बस कुछ समय के लिए आजाद कर दीजिए, खुद को माफ कर दीजिए और खुलकर सांस लीजिए। आज ब्रेक फ्री आप सभी से यही कहता है, मैं ब्रेक फ्री के जरिए आप सभी से यही कहती हूँ। बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो। ठीक 12 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में मुख्य समाचार, जिसके बाद होगा म्यूजिक कैफे शुरू और आज कुछ धमाल कमाल करेंगे म्यूजिक कैफे में। हाँ, और अभी आप सभी के लिए वो गाना जो एक तरह से कह सकते हैं आप जीवन का फलसफा है, और वो कहता है कि भाई मौला, कितनी चीज़ों से मेरे ईश्वर में गुजरूं, और फिर वो ये भी कहता है कि भाई तुम हो तो क्या गम है। और ये आप जो है अपने ऊपर वाले से भी कह सकते हैं या आपके अपने किसी खास से, है ना। बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: 12:10 हो चुके हैं और आइए इस घंटे के मुख्य समाचारों पर एक नजर डालें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर पर यानी 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। राज्य की पूर्व पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें लोकायुक्त सदस्य नियुक्त किया गया है। साथ ही ओपी गुप्ता और सुवर्णा केवले को भी लोकायुक्त सदस्य के रूप में चुना गया है। मुख्य समाचारों में आगे, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में बगावत की अटकलों के बीच पार्टी सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा सभापति ओम बिरला से अनुरोध किया है कि पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले किसी भी बागी गुट को मान्यता नहीं दी जाए। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष के 9 से कम 6 सांसदों के लोकसभा में अलग गुट बनाने की अटकलें तेज हो गई हैं। मुख्य समाचारों के अंत में, गुजरात के वडोदरा शहर में के कोटंबी स्टेडियम के पास आज तड़के करीब 4 सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत और 31 अन्य घायल हो गए। घायलों को SSG अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के नाम की घोषणा आधिकारिक तौर पर अभी नहीं हुई है। इसी के साथ इस घंटे के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। म्यूजिक कैफे के लिए बने रहे 107.1 FM रेनबो पर।

एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मॉडर्न भाषा में बोले तो सब कूल ना? आप भी नहीं? मुझे लगा ही था। सच तो ये है कि बाहर पैर रखने की ऐसी हालत हो जाती है ना, रखने के बाद यानी पाँव, देखिए कि किसी ने किसी को तकलीफ तो हो ही जाती है। और किस तरह से भाई पाँव बाहर रखते ही ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने तवे पर छोड़ दिया हो। सुबह उठो तो गर्मी, दोपहर में बाहर निकलो तो गर्मी, भाई महा गर्मी ही गर्मी है। अब तो बस एक ही दुआ निकलती है दिल से कि काले काले बादल आए और इस गर्मी को टाटा बाय बाय कह दे। इस बात पर याद आता है कुछ, याद आता है आमिर खान का सुपर हिट गाना और कई सारे लोगों के सुपर हिट गाने गर्मी को लेकर। और भाई हाय गर्मी तो अभी नहीं आप सभी के लिए प्ले हो सकता, उपलब्ध नहीं है, क्योंकि भाई वो गर्मी जो है अलग है ना, ये वो वाली मौसम वाली नहीं है। तो भाई इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है कि उफ़, कूलर से भी ऐसी हवा आ रही है जैसे कि वो पानी नहीं, उबला हुआ सूप फेंक रहा हो। और भाई एसी भी उतना ठंडा नहीं कर रहा, और यहाँ पर देखो बादल नहीं पर एसी ज़रूर पानी छोड़ रहा। ऐसी सारी चीज़ें चल रही है, पर चलिए हम सभी मिलकर बादलों को बुलाते हैं और बारिश हो जाए भाई कहीं। आज तो इतने काले बादल मंडरा रहे थे कि मुझे लगा कि भाई मुझ पर भी कुछ बूंदे गिर ही जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो चलिए थोड़ा सा प्यार दिखाते हैं बारिश को, ताकि वो थोड़ा हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: रेवा डायमंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ PNG एंड सन्स प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर।
3: असली डायमंड की असली चमक, आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट।
2: आज ही विजिट कीजिए PN गाडगिल शोरूम, रचना संसद, प्रभा देवी, सृष्टि प्राइम, गोखले रोड, ठाणे, फड़के रोड, डोंबिवली और बदलापुर।
3: रेवा, नेचुरल डायमंड ज्वेलरी, शाइन नेचुरली।
4: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
5: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
4: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
5: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
4: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

म्यूजिक कैफे चल रहा है और बातें हो रही हैं बारिश की, क्योंकि इंतजार बारिश का बहुत ही जोर से हो रहा है। हाँ, जोर शोर से भी हो रहा है और बहुत सारे भाई दुख से भी हो रहा है कि बारिश हो क्यों नहीं रही है अब तक। भाई हो जानी चाहिए, हमें हालांकि पता है कि इसकी वजह क्या है और क्या सारी चीजें चल रही है और मौसम का क्या हाल है, ये हम सभी जानते हैं। फिर भी बारिश से हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि उसे मिड जून तक आना ही है। और मुंबई जैसा शहर भाई जो थोड़ा कम तपता है हमारे उत्तर भारत के और हमारे मध्य भारत के शहरों से, लेकिन फिर भी देखिए ह्यूमिडिटी एक चीज होती है और वो बहुत खतरनाक चीज होती है, जो आपको तटीय जगहों पर ही पता चलेगी। जो कोस्टल शहरों में जब आप जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि भाई कोस्टल शहरों की ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो भाई यही हाल है और हाल बेहाल है दोस्तों। भाई देखिए, गाना सुनकर थोड़ा तो लगा ना कि बादल बस छाने ही वाले हैं, लेकिन सच कहूं, मौसम विभाग वाले कहें या ना कहें कि आज बारिश होगी, हम जो आसमान की तरफ है ऐसे देखते हैं जैसे दामाद का इंतजार कर रहे हो और मम्मियों ने तो तैयारी कर ली है, अलमारी से छतरियां निकाल ली हुए और रेनकोट भी बैग में पैक हो गया है और बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी अभी तो बारिश नहीं हुई है, क्यों हमें सता रही हो और बोझ बढ़ा रही हो, ऑलरेडी किताबों का इतना बोझ जो है। लेकिन चाहे जो भी हो, हम इंतजार तो करते रहते हैं, है ना, और ये सारी तैयारियां करना तो बनता है। वही कमबख्त ये बादल हैं कि रास्ता भूल गए ऐसा लग रहा है। देखिए, पकौड़े तलने के लिए बेसन का स्टॉक भी तैयार है, लेकिन ये जो है शायद गूगल मैप्स पर गलत टर्न ले चुके हैं और अब तो हालत ये है कि कोई खिड़की से ठंडी हवा का एक झोंका भी मार देना, यानी और कौन मारेगा भाई, यानी हवा अगर चल जाए ना तो दिल सीधे रोमांटिक हो जाएगा, ये डर लगा रहता है। मुझे पता है कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा प्रोत्साहित कर रही हूँ ताकि आप बारिश को अट्रैक्ट कर सके। तो चलिए अट्रैक्ट करते हैं बारिश को एक और प्यारे गाने के साथ। सुनिए, बने रहे 107.1 FM रेनबो पर, म्यूजिकली योर्स।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

म्यूजिक कैफे चल रहा है 107.1 एफएम रेनबो पर और मैं हूँ वैशाली आप सभी के साथ। बहुत ही ज्यादा मस्ती भरी बातें हो रही है बारिश को लेकर, या ये कहूँ बारिश के ना होने को लेकर। जो इंतजार रहता है भाई बारिश का मुंबई घरों को, पूरा मुंबई ऐसा खेल जाता है जैसा कि पूरे साल नहीं खिलता। ऑफ कोर्स तो दोस्तों बहुत सारी बातें आपसे और भी करनी थी, पर ये बात है कि बहुत ही शॉर्ट में मुझे ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि ठीक 12:30 बजे आप सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम और उसके लिए बस थोड़ी और देर है, तो मेरे पास थोड़ा कम समय है इस बारिश को लेकर रोना धोना करने के लिए। लेकिन देखिए रोना धोना तो अपनी जगह है भाई, बारिश ऐसी चीज़ है ना

कि क्या ही कहें, बहुत ही कमाल है, इतना अच्छा लगता है, सारी चीजें खिल उठती है भाई। अब इस गर्मी में ना तो रोमांस सूझता है ना ही कुछ और, भाई ऐसी की तैसी हो रखी है बहुत सारी चीजों की क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है। लोग कहते हैं बारिश का मौसम आशिकों का होता है, पर इस सूखी गर्मी में अरे भाई, अगर कोई आशिक अपनी महबूबा का हाथ पकड़ ले तो महबूबा कहती है प्लीज प्लीज आज छोड़ दो, बहुत पसीना आ रहा है, पहले एसी चालू करो, और अगर एसी नहीं चल रहा हो तो यानी जब तक पानी नहीं बरसेगा तब तक दिल की घंटी नहीं, सिर्फ पसीने की बूंदे गिरेंगी। तो चलिए इंद्रदेव को थोड़ा और मस्का लगाते हैं, हमारे थोड़ा फिल्मी स्टाइल में मिन्नतें करते हैं ताकि वो अपनी बारिश से भरे बादल भेज दे। और मैं देख रही हूँ बादल तो है पर बरसेंगे कब, इसका इंतजार है। चलो हम कोशिश अपनी जारी रखते हैं, बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो म्यूजिकली योर।

न्यूज ऑन AIR ऐप और FM पर आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। अभी आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
3: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूं। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हां श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के

0: कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओ इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। यह एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओ। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहां गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहां तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ देव से जोड़ा जाता है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओ, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियां भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। यह झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहां तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओ, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियां प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800-440-559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी। अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
3: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
2: हाँ पूछो।
3: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
2: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
3: अच्छा।
2: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे।
4: ओह,
2: अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
3: अच्छा।
2: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए।
3: ओ,
2: उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
4: अच्छा।
2: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
3: ओ, मंगल पांडे।
2: हाँ, मंगल पांडे 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
4: अच्छा।
2: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे, अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी, फिर क्या हुआ?
1: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
0: फिर क्या हुआ दादी?
1: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
1: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
0: अच्छा।
1: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
4: हमें कुछ करना।
2: उसके बाद क्या हुआ?
1: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
5: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे,
6: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
5: नहीं, भले ही हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े।
1: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
5: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो, मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
1: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
7: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
8: मंगल पांडे
9: जिंदाबाद,
8: मंगल पांडे
9: जिंदाबाद,
8: इंकलाब
9: जिंदाबाद,
8: इंकलाब
9: जिंदाबाद।
1: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉर्म आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
10: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
1: सारी छावनी में खलबली मच गई।
0: उसके बाद क्या हुआ दादी?
1: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
5: अरेस्ट करो,
10: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे,
11: नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, कोई और कर देगा।
0: दादी जी, फिर क्या हुआ?
1: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली।

0: हम पांडे को ठीक होना मांगता है, तुरंत अस्पताल भेजो।
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूँ।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता, जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
4: अच्छा।
2: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
5: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मसहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भैल, जननी के भेंट परान भैल, आजादी का बलबेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भैल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
4: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
2: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
4: अच्छा।
2: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तानकर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशी का।
7: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है, और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
8: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
9: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
8: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
9: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
8: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
9: अच्छा माँ।
10: माँ माँ।
9: लो देवेंद्र भी आ गया।
10: दीदी मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
8: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
9: ठीक है माँ।
10: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठ कर खाऊंगा।
9: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
10: ये देखो दीदी, ये मारा।
9: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
10: अरे ये मारा।
9: अच्छा तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
10: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
9: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
10: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
8: लगता है कोई आया है। काशु बेटी देखो दरवाजे पर कौन है।
9: अच्छा माँ, कौन आप लोग? कौन कहिए, किससे मिलना है? अरे
11: हमें अंदर आने दो।
9: अरे क्यों?
12: ए लड़की रास्ते से हट जा।
9: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
11: लड़की हट। ये चाकू देख रही है ना?
12: ज्यादा होशियारी मत दिखा,
9: अरे
12: वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। हट रास्ते से।
9: क्या हुआ? देखो
8: ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
11: शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
9: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
11: ये चाकू देख रही है ना?
9: छोड़ दो, मुझे मत मारो। कुछ मत करो।
8: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम,
11: जल्दी।
8: याद नहीं कहाँ रखी है।
12: अरे बहानेबाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
8: अरे मेरे बात छोड़ो,
9: मेरी माँ को छोड़ो।
11: चुप चुप, आवाज निकाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
12: सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
8: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
9: देवेंद्र।
10: हाँ दीदी।
9: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
10: हाँ।
9: पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
10: अच्छा।
9: हेलो।
11: हाँ बेटा बोलो।
9: पापा पापा।
11: हाँ बोलो बेटा।
9: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
11: कौन घुसा है?

आप सुन रहे हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप और एफएम पर आकाशवाणी मुंबई केंद्र से एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। आपकी पसंद के गाने, आपके दिल की बातें 107.1 एफएम रेनबो पर हिट एंड हॉट में। मैं हूं वैशाली और आप सभी ये मैसेजेस मैं पढ़ रही हूं एक एक करके। इनफैक्ट काफ़ी समय से मैं पढ़ रही हूं और दर्ज कर रही हूं आपकी बातें भी। क्या सारी चीज़ें आप कह रहे हैं, क्या कुछ आप कर रहे हैं, वाह बहुत ही काबिले तारीफ़ है। और सबसे पहले मेरी बात हुई अय्याज चौधरी इनसे और इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उन्हें शो का थीम। दोनों शोज़ में उन्होंने कहा मज़ेदार बात ये रही कि भाई गाने उनके दिल को छू गए। और इन्होंने बताया हमें कि देखिए जिंदगी का जो आपने बताया ना एक एंगल के बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन और तकलीफ वगैरह होती है, तो इन सब का इलाज भी आपने बताया कि एक तो डेफिनेटली मेडिटेशन और योग है, क्योंकि हर बार तो इंसान चीखते चिल्लाते या किसी पर गुस्सा निकालते तो नहीं बैठ सकता है ना। तो ये बात इन्होंने कही और कहा कि डेफिनेटली मेडिटेशन का आइडिया बहुत अच्छा है और अच्छा लगा उन्हें। और भाई बारिश का तो बेसब्री से सभी इंतजार कर ही रहे हैं। फिर मेरी बात हुई पंकज मोहड़िन से और पंकज जी ने ये कहा कि ये ट्रैवल कर रहे थे, कहीं बाहर थे, बैंक के काम से गए थे, पर कहते हैं दोस्त के यहाँ रुक कर मैंने ब्लूटूथ ईयरफोन्स पर जो है शो सुना। वाह क्या बात है। और कई सारी बातें इन्होंने हमारे साथ साझा की है। हमेशा की तरह लिखते जिंदगी की भागदौड़ कभी कभी बोझ सी लगती है और भाई सारी बातें उन्हें बहुत प्रेरणादायक लगती हैं जो हम एफएम रेनबो पर करते हैं। तो लिखते दिल का दर्द सारा तनाव बाहर निकालना ज़रूरी है, खुद को खुद से वापस मिलाना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है, बहुत कुछ इन्होंने साझा किया। और ये भी लिखा है कि जो आजकल की गर्मी है भाई वाकई हाल बेहाल है, लेकिन कहते कल बरसात हुई थी उनके वहां तो कल से और आज के दिन गर्मी से थोड़ी कुछ राहत मिल रही है, लेकिन खेती के काम के लिए और बारिश की जरूरत है लगातार और 3 से 4 दिन कम से कम 3 से 4 बार बारिश होने पर खेती के काम और फसल लगाने की शुरुआत होती है। वाह क्या बात है। और मैं यहाँ देख रही हूँ हमें और भी हमारे श्रोता मित्रों के मैसेजेस आए हैं। तो अय्याज चौधरी जी, पंकज जी और शुभलक्ष्मी मस्तकर जी ने भी हमें बातें भेजी हैं लिखकर। ये लिखती है कि कभी कभी मैं समुद्र किनारे जाती हूँ और भाई समुद्र को अपने दिल की बातें बताती हूँ, अपने दिल की बातें शेयर करती हूँ। बात है, कोशिश रहेगी। शुभलक्ष्मी जी आपने गाना अभी अभी भेजा है ना, तो अगर समय रहेगा तो बिल्कुल आपका गाना हम प्ले करेंगे। और हमें डॉक्टर अंजू का भी मैसेज आया था, इन्होंने लिखा कि हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि योग जो है हमारे फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और लिखती है कि उसका एक और रास्ता है जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था, वो भी इत्तफाक रखती है कि कोई क्लोज फ्रेंड्स हैं तो आप उनके साथ अपनी डिफ़िकल्टीज फ्रस्ट्रेशन शेयर करते हो, बहुत अच्छा लगता है। वाह क्या बात है। डॉक्टर अंजू बहुत सारे काम की चीज़ें हमारे साथ हमेशा साझा करती है। फिर मुझे यहाँ पर मैसेज आया है विक्रम अठवले जी का मीरज से और इन्होंने गाने की फरमाइश की है। अशोक पाटिल और राजेश मोरे वर्ली कोलीवाड़ा से मैसेज करते हैं हमें और इनकी फरमाइश है ओ हसीना जुल्फों वाली। तो तीन एक गाने आप सभी के लिए बैक टू बैक प्ले होंगे और हमारे पास ऑलरेडी 8-9 फरमाइशें हैं लिस्ट में, तो जिनकी फरमाइशें बाद में आई हैं मैं शायद नहीं प्ले कर पाऊंगी आपके गाने, पर बाकी हमारे श्रोता मित्रों के गाने ज़रूर प्ले होने वाले हैं यहाँ पर। और मैं देख रही हूँ कि अशोक पाटिल जी ने ये भी लिखा था कि भाई कोई और एक गाना उन्होंने लिखा था वो सुनना चाहते हैं लेकिन वो है नहीं, पर ये भी साथ लिखा है इन्होंने कि गर्मी से सभी परेशान हैं, किसान बारिश गिरे तो हरियाली आ जाए इसका इंतज़ार करते कि बाकी कामों की शुरुआत हो। वाह क्या बात है। आप सभी यूं ही बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।
ये सबसे पहली फरमाइश अय्याज चौधरी इनकी।

0: सुबह का हर पल जिंदगी दे आपको।
1: तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा।
0: दिन का हर लम्हा खुशी दे आपको।
2: इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का।
0: जहाँ गम की हवा छू के भी ना गुजरे, खुदा वो जन्नत सी जमी दे आपको। ये जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए खुश रहिए, मुस्कुराइए, गुनगुनाइए 107.1 FM रेनबो के संग, दिल से दिल तक।

हिट एंड हॉट चल रहा है 107.1 एफएम रेनबो पर. और अभी जो गाना आपने सुना वो थी फरमाइश सदमा फिल्म का गाना, विक्रम आठवले जी का मीरज से. और अभी मैं और कुछ गाने प्ले करने वाली हूँ, अशोक पाटिल और राजेश मोरे इनकी फरमाइश जो है ओ हसीना जुल्फो वाली. और साथ ही साथ संजय दर्शन जी ने रिक्वेस्ट की थी गाने की जिसका नाम है रिमझिम गिरे सावन, तो वो वही कह रहे थे कि भाई ऐसा गाना भी आप प्ले कर दीजिए कोई राग वगैरह के वाकई बारिश हो जाए, क्योंकि इंतजार है सच में बेसब्री से. और फिर देखिए और भी गाने लाइंड अप है यहाँ पर. अब ये दो गाने पुराने वाले हैं तो ये पहले हम प्ले करेंगे. और भाई उसके बाद जो है सावन आया है, इस गाने की फरमाइश की है पंकज मोहड़ जी ने और मीना जी ने भी लिख भेजा था, तो शायद वो सुनना चाहती है यही मैं सोच रही हूँ. तो इन दोनों के लिए जो गाना प्ले होगा वो है सावन आया है. तो पहले ये दो गाने बैक टू बैक आप सभी के लिए, फिर शायद समाचारों के बाद अगले गाने प्ले होंगे. तो बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स.

0: आप सुन रहे हैं हिट एंड हॉट 107.1 एफएम रेनबो पर और अभी ठीक 1:30 बजे आप सुनेंगे न्यूज स्टूडियो से राष्ट्रीय मराठी समाचार।
1: आकाशवाणी मुंबई।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 एफएम रेनबो। आप हमें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और एफएम पर सुन रहे हैं। आप सभी का दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। आप बने हुए हैं, सुन रहे हैं, आपके इतने सारे प्यार कॉल्स और मैसेजेस के लिए सच में दिल से धन्यवाद। मुझे जो है शुभलक्ष्मी मस्तकर जी का मैसेज बहुत पहले आया था, गाना फिर उन्होंने बाद में भेजा था, वो मैं प्ले करने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल अभी फिलहाल मैं प्ले करने वाली हूँ। जालंधर से मुझे मैसेज आया है जिनका, संदीप कुमार जी का नाम है, अब ज्योति मक्कड़ और फिर मन्नत भारत, ये सभी मक्कड़ फैमिली की तरफ से हमें जालंधर से ये मैसेज आया है, तो मैं बिल्कुल इनका ये गाना प्ले करूंगी। और मुझे मैसेज आया है विजेंद्र घाटोल जी का और प्रमोद चिंचोलकर जी का भी, और उनका गाना मैं वही देख रही हूँ, उनका मैसेज ढूंढ रही हूँ। हाँ, मैसेज मेनली ढूंढ रही हूँ, गाना तो मैंने निकाल रखा है। अब देखिए, विजेंद्र जी लिखते हैं हमें कि ये फिल्म का गीत सुनना ही सुनना चाहते, फिर इन्होंने चेंज कर दिया अपना सॉन्ग चॉइस। तो विजेंद्र जी, आप इतने मैसेजेस भेजेंगे तो आपका जो मैसेज है ना व्हाट्सएप पर, वो ऊपर चला जाता है। तो इवन इफ आपने समय रहते मैसेज किया हो तो क्या होता है, आपका मैसेज ऊपर जाने से फिर वो देर से पढ़ा जाता है, है ना। तो भाई, इन्होंने लिखा है कि हम मैच देख रहे हैं, इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान, इंडिया की बैटिंग है, लेकिन गाने भी सुन रहे हैं, बहुत दिन से फरमाइशें पूरी नहीं हो रही, अब क्या करें। वही आपके जो साथी हैं सारे हमारे श्रोता मित्र, इन्होंने इतनी फरमाइशें भेज दी है, बाढ़ कर दी है, तो इसी वजह से। अब देखिए, ये मैं जो है जालंधर से जो फैमिली है इनके मैं गाने प्ले करूंगी, मक्कड़ फैमिली के। फिर विजेंद्र घाटोल जी ने लास्ट फरमाइश किया अखियों से गोली मारे की, और प्रमोद चिंचोलकर जी ने टिप टिप बरसा पानी इस गाने की फरमाइश भेजी है। शुभलक्ष्मी मस्तकर जी ने भी गाने की फरमाइश भेजी है, जो है ए दिल लाया है बाहर। तो दे दे प्यार दे और ए दिल लाया है बाहर आप सुनेंगे बैक टू बैक, उसके बाद दो और गाने होंगे, और अगर गुंजाइश होगी तो और गाने भी आप सभी के लिए हम प्ले करेंगे। बने रहे 107.1 FM रेनबो पर, म्यूजिकली योर्स।

हिट एंड हॉट चल रहा है 107.1 FM रेनबो पर, और आप सभी के मैसेजेस के लिए दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों, बहुत ही जल्द आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और इसे अलग अलग तरीकों से हम मना रहे हैं। अब देखिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने का प्रयास भी हुआ है। योग का महत्व तो हम सभी जानते हैं। अब देखिए, बात ऐसी है कि एक योग संगम 2026 बनाया जा रहा है, और ये संगम बनाया गया है ऑनलाइन। देखिए, आयुष मंत्रालय ने योग संगम पोर्टल 2026 भी शुरू किया है, जिसके माध्यम से संस्थाएं, विद्यालय, महाविद्यालय, सामाजिक संगठन और अन्य समूह 21 जून को योग कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। 21 जून को देश भर में हजारों स्थानों पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित होंगे। आप भी अपने क्षेत्र में आयोजित योग संगम कार्यक्रम में अवश्य भाग लें। दोस्तों, ऐसी कई सारी अच्छी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं हमेशा, बहुत अच्छे संदेश और आपके काम की चीजें, और यही आपको याद दिलाना चाहती हूं कि योग है स्वस्थ जीवन की कुंजी। हर दिन कुछ मिनट योग, जीवन भर निरोग। भाई, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहते हैं ना, तो बस योग यानी यही है। और जाने से पहले दो और गाने प्ले होंगे, वो है टिप टिप बरसा पानी और अखियों से गोली मारे विजेंद्र घाटोल और प्रमोद चिंचोलकर जी से। साथ ही साथ हमारे अन्य श्रोता जिनके मैसेजेस आए हैं, मैं बिल्कुल उनका नाम लेना चाहती हूँ, उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। राम प्रजापति जी वसई से, नम्रता पाटिल बेंगलुरु से, महेश बोहरा जी हमारे साथ बने हुए हैं अजमेर राजस्थान से, और इन्होंने लिखा है कि यही उम्मीद है कि बारिश को तो आखिर आना होगा, तभी आएगी उम्मीद। और लिखते, फिलहाल मैं तो आपकी मस्ती भरी बातों की बूंदों और दिल को छू लेने वाले गानों को एंजॉय कर रहा हूँ, धन्यवाद आपका। फिर अजय साखरे जी इंदौर से हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हैं, और फिर दिग्दर्शन और कविता जी भी जुड़े हैं। शुभदा जी, मैंने आपका गाना प्ले कर दिया है, क्या कहना, फिल्म का गाना जो अभी अभी प्ले हुआ। और यहाँ पर मेरठ से दिग्दर्शन, कविता और हीरामणि वर्मा और उनका परिवार, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं। मेहर अरोड़ा जी श्रीगंगानगर राजस्थान से बने हुए हैं। हरजिंदर छिंदा जी जसवीर जो है, अच्छा इनका पूरा नाम हरजिंदर छिंदा है और ये जसवीर जस्सी भी हैं इनके साथ, और ये पंजाब से गांव नथाना से हमारे साथ बने हुए हैं, धन्यवाद। और हितेंद्र दास जी भी हमारे साथ बने हुए हैं असम से, शुक्रिया आपका। संदीप कुमार जी भी बने हुए हैं हमारे साथ, और इनका मैसेज और गाना हमने प्ले कर दिया है। आगे जो है रविंद्र देशपांडे जी पूना से हमारे साथ बने हुए हैं, धन्यवाद आपका। पंकज मोहर जी का फिर से मैसेज आया है, और प्रकाश शिंदे जी का भी अभी मैसेज आया हुआ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मेरे ख्याल से आपका मैसेज शायद नहीं दिखा किसी कारणवश, तो बिल्कुल कोशिश होगी कि आपका गाना प्ले कर सके, ठीक है। तो आप सभी बने रहिए, और मैं देख रही हूँ कि फिरोज सिगनपोरिया जी भी बने हुए हैं, मिंटू टॉमस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धन्यवाद आप सभी का। और बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो।

0: on 66 points to 24,056 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. G7 leaders adopt declarations on global stability, security cooperation and efforts to counter transnational organized crime. Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avignon, France, to reach Paris this evening as part of his visit to France. Defence Minister Rajnath Singh says India's sovereignty non-negotiable, cites surgical strikes, Balakot and Operation Sindoor as decisive actions against terrorism. India's defence production soars to record 1.78 lakh crore rupees in financial year 2025-26, surges 110% since 2020-21. Security forces intensify enforcement and counter-insurgency operations across Manipur, 3 militants arrested, 26 illegal bunkers destroyed. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and Afghanistan underway in Lucknow. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
2: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है, ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए, भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
1: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज़ से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख एशियाई कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओज के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक युवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में युवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब यह आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात 53 अरब डॉलर मूल्य का था।
3: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात 53 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से

0: रखने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
1: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टेयर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टेयर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
2: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
3: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून

तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना आरजे राहिल, 107.1 एफएम पर आप सभी लिसनर्स को वेलकम करना चाहता हूं। हमेशा की तरह आज भी स्टूडियो में आके, आज भी ऑन एयर आके बहुत अच्छा लग रहा है। बीच में मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं तकरीबन 2-4 हफ्ते बाद आया हूं, बट देन बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। जितने भी लोग इस वक्त जुड़े हैं मेरे साथ, उन सभी को बताना चाहता हूं आज का शो भी होने वाला है सुपर अमेजिंग। सुनने वाले हैं ढेर सारे इसी तरीके के खूबसूरत गाने। फिलहाल चल रहा है शो जिसका नाम है लव यू जिंदगी। एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी से हमेशा प्यार करिए। इसको और खुशहाल बनाने के लिए चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल रखिए। हाँ, उतार चढ़ाव तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन एक ही चीज कहना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो, वेक अप सिड। सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

वेलकम बैक दोस्तों, 5:16 हो रहे हैं 107.1 FM पर। आप मुझे सुन रहे हैं यानी कि आरजे राहिल को। आज डेफिनेटली एक अगर बॉम्बे में जितने भी लोग हैं, आई एम श्योर वो इस बात से सहमत होंगे कि कहीं ना कहीं मानसून की ना खुशबू आने लगी है, यानी कि बारिश शुरू होने जा रही है। और इस खूबसूरत बारिश के मौसम का इंतज़ार आई एम श्योर काफ़ी सारे लोग करते हैं, और फसलें भी इंतज़ार करती हैं, लोग भी इंतज़ार करते हैं, बिकॉज़ आई थिंक मानसून्स बारिश अपने आप में ही एक खूबसूरत चीज़ है। फिलहाल आप सभी को एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, ये कि बस थोड़ी ही देर में आप सभी के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लेकर आने वाला हूँ मैं। क्या है, कब होगा, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा, बट फिलहाल सुनिए खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए जो आ रहा है एक्सक्लूसिवली 107.1 FM पर।

0: विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 च्या कलम 12 नुसार पात्र नागरिक निशुल्क कायदेशीर मदत न्याय बंधू या मोबाईल ऍप वरून किंवा www.provono-doj.in या वेबसाइट वरून मिळवू शकता।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

वेलकम बैक दोस्तों, 107.1 FM पर आप सभी का स्वागत है। 5:30 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स। फिलहाल आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये चल रहा है शो जिसका नाम है लव यू जिंदगी। थोड़ी ही देर बाद, इन द लास्ट आवर, आखिरी आवर जिसमें हम अंदाज़े बयां शो करते हैं विद अ लॉट ऑफ सूफी म्यूजिक, कवालीज, गज़लें, शेर व शायरी एट्सेट्रा, उसमें डेफिनेटली अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं तो ज़रूर हम तक पहुँचें ऑन 8657661071। फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत रिक्वेस्ट, हालांकि अभी रिक्वेस्ट आवर शुरू हुआ नहीं है, लेकिन एक बहुत ही प्यारी बच्ची जिसका नाम है सारा नूर, उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना मैं प्ले करना चाहता हूँ ऑन अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट बाय द मदर ऑफ सारा नूर। सो हियर इज़ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर द लिटिल प्रिंसेस।

वेलकम बैक दोस्तों, 5:42 हो रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज हम जैसे मैंने बताया था कि कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो आप सभी को बता दूँ कि एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जिसका नाम आप सभी को बता दूँ कि है प्राणायाम फॉर हेल्दी लंग्स एंड कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है। हालांकि स्वास्थ्य अच्छा रहना यानी कि हेल्थ अच्छी रहनी बहुत ज़रूरी है, और आजकल लोग इतना अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए हैं, बिज़ी हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपने लिए वक्त नहीं है। हालांकि बात तो ये है कि अगर इंसान चाहे तो डेफिनेटली अपने लिए कम से कम दिन के 30 मिनट अपने शरीर के लिए तो ज़रूर निकाल सकता है। फिर चाहे वो मेडिटेशन के रूप में हो, फिर चाहे वो कसरत के रूप में हो, जिम के रूप में हो, योगा के रूप में हो, या फिर प्राणायाम के रूप में हो। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। और आपका जो विश्वास है, आपका जो अधिकार है अपनी बॉडी पर, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिंपली बिकॉज़ ये शरीर की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले ने आपको दी है। आप इस बॉडी के अंदर क्या खाना डाल रहे हैं, क्या लिक्विड डाल रहे हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। जिसके लिए लंग्स का हेल्दी रहना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब तक सांस चल रही है तब तक इंसान जीवित है। तो ये सांस भरती है लंग्स में, हम सब जानते हैं, बहुत बेसिक है। और इसका मजबूत रहना, इसका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली धूम्रपान का सेवन करते हैं, यानी कि स्मोकिंग करते हैं, वो किसी भी रूप में हो सकती है, तो वो भी बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन आजकल ये चीज़ देखी गई है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से हटना चाहते हैं, बहुत सारे लोग क्विट करना चाहते हैं और क्विट कर भी रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो मुझे लगता है कि योगा से, मेडिटेशन से, प्राणायाम से डेफिनेटली ये चीज़ अचीव हो सकती है। अब इसके बारे में हम डेफिनेटली और चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। फिलहाल जब दिल की बात हो रही है तो आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गाना मुझे याद आ रहा है जो मैं प्ले करना चाहता हूँ, फ्रॉम द फिल्म परदेस। सुनते रहिए 107.1 FM। इसके अलावा हम और डिस्कस करने वाले हैं प्राणायाम फॉर हेल्दी लंग्स एंड कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। सुनते रहिए।

0: मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 कलम 12 नुसार पात्र नागरिक निशुल्क कायदेशीर मदत न्याय बंधू या मोबाईल ऍप वरून किंवा www.probono-doj.in या वेबसाइट वरून मिळवू शकता.
1: वेलकम बैक दोस्तों. तो हम बिल्कुल बात कर रहे थे प्राणायाम की, एक ऐसी प्राचीन योगिक प्रैक्टिस जो आई थिंक सिर्फ मन को शांत नहीं करती बल्कि हमारे लंग्स और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी सपोर्ट कर सकती है. लेकिन ये तभी मुमकिन है, जैसे मैंने कहा, जब आप थोड़ी सी कोशिश करें. देखिए, सिंपल शब्दों में प्राणायाम का मतलब होता है सांसों पर कंट्रोल रखना, यानी कि सांसों पर नियंत्रण रहना हमारा खुद का. बेसिकली हम जब सांस लेते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी लेते हैं, यानी कि ऊपर ऊपर से लेते हैं. बल्कि जब हम गहरी और तेज़ गहरी सांस लेते हैं तब हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है और सांस लेने की प्रक्रिया भी बदल जाती है और उसी से उस चीज़ का ज़्यादा असर होता है. यानी कि बॉडी को, लंग्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन. बॉडी को तभी मिलता है जब आप उसको ढेर सारा दें. आप आई एम श्योर इस बात से सहमत होंगे, जब भी आप कोई हिल स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पर जब आप सांस लेते हैं तो आपको बहुत नेचुरल फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है. वो इसीलिए क्योंकि आपके जो आसपास यू नो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन होती है वो इतनी प्योर होती है हाइट की वजह से, पेड़ पौधों की वजह से, तो वो आपको ब्रीथ करने में भी अच्छा लगता है. कुछ एक्सरसाइजेज ध्यान रखते हैं जिसे हमें डेफिनेटली करना चाहिए, जैसे अनुलोम विलोम, जहाँ पर एक नाक बंद करके आप दूसरे हिस्से से सांस लेते हैं और फिर दूसरे को बंद करके आप पहले वाले हिस्से से सांस लेते हैं, तो उसको अनुलोम विलोम कहते हैं. डीप ब्रीदिंग, यानी कि आप अपनी आंखें बंद कर डीप ब्रीदिंग करें, तो डेफिनेटली

थिंक लंग्स आपके स्ट्रांग होते हैं. बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया पे भी एक्सरसाइजेज दिखाई जाती हैं जहाँ पर आपको कुछ सेकंड्स के लिए एक लंबी गहरी सांस लेकर कंट्रोल करना चाहिए. कम से कम 10 सेकंड तक इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद आप 10 सेकंड बाद या 8 सेकंड बाद उस सांस को रिलीज़ कर सकते हैं. ऐसे आप आहिस्ता आहिस्ता करके वक्त बढ़ा सकते हैं. तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे मैंने बताया अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी हो गया या डीप ब्रीदिंग हो गया, इस तरीके के कुछ इम्पॉर्टेंट सांस के जो एक्सरसाइजेज हैं. अगर आप वो करते हैं तो डेफिनेटली अस्थमा जैसे हार्ट डिजीजेज, ब्लड प्रेशर या कोई अन्य मेडिकल कंडीशन किसी को है तो डेफिनेटली आप किसी योग एक्सपर्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे एडवांस प्राणायाम की टेक्निक्स भी सीख सकते हैं. आजकल तो मुझे लगता है हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है. ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आप अच्छी टेक्निक सीखें जो आपके बॉडी को सूट करें, क्योंकि एक सांस ही एक इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ है जिससे पता चलता है इंसान जीवित है या नहीं. तो उसको बहुत ज़्यादा महत्व दें, इम्पॉर्टेंस दें, बिकॉज वो सिर्फ एक चीज़ आई थिंक ओवरऑल सारे ही बॉडी के ऑर्गन्स को, फिर चाहे वो हार्ट हो, चाहे लंग्स हो, चाहे बाकी के ऑर्गन्स हो, उनका ध्यान देती है. तो ज़रूर इस बात को इम्पॉर्टेंट समझें और इस चीज़ को, खुद आपका खुद का अपना शरीर है, इस चीज़ को ज़रूर महत्व दें कि जो श्वास है, जो सांस है, वो कार्डियोवैस्कुलर यू नो रिलेटेड चीज़ों के लिए भी अच्छी है और डेफिनेटली आपकी लंग्स के लिए भी अच्छी है. फिलहाल सुनते हैं केके की आवाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत गाना आप सभी के लिए 107.1 FM पर.

0: मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: वेलकम बैक दोस्तों, 107.1 FM पर आप सुन रहे हैं ये खूबसूरत सा शो। और फिलहाल आप सभी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम इतने लगभग 10 मिनट से डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है प्राणायाम फॉर हेल्दी लंग्स एंड कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। अब इसका मतलब होता है कि जो प्राणायाम होते हैं वो आपके हेल्दी लंग्स के लिए कितने ज़रूरी हैं और आपकी ओवरऑल हार्ट के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, जिसको कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस कहते हैं, कि ओवरऑल जो आपका शरीर है उसके लिए कितना ज़रूरी है, जिसमें मैंने आपको बताया कि डेफिनेटली अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग, ब्रह्मारी जैसे जो प्राणायाम के एक्सरसाइजेज हैं उसे आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप सुबह उठें, इसका अगर सही समय है तो मैं आपको बताऊं, हालांकि दिन में कभी भी आप कर सकते हैं, बट सुबह अगर आप 5 से 10 मिनट शुरुआत में एक शांत जगह पर बैठ कर धीरे धीरे गहरी सांस लेना शुरू करें और छोड़ें, इस चीज़ का अगर आप अभ्यास करें तो डेफिनेटली आपको अपने आप में एक बदलाव दिखेगा। बिकॉज आपने शुरू के वक्त पे ही जब आप उठे हैं, आपने वो 10 मिनट अपने आप को दिए, अपने शरीर को दिए। खैर, ये चीज़ कितनी ज़रूरी है ये आप तो समझ ही चुके होंगे। फिलहाल अब आप कनेक्टेड होने वाले हैं न्यूज़ के साथ, तो कहीं जाइए मत, न्यूज़ डेफिनेटली आप सभी के लिए आ रही है, इंतज़ार कीजिए। और हाँ, मैं बस थोड़ी देर में आप सबसे फिर से मिलूँगा अगला प्रोग्राम लेके आप सभी के लिए, जो है शुरू होने वाला है बस थोड़ी ही देर में। सुनते रहिए दोस्तों 107.1 FM, रेनबो म्यूजिकली योर्स।

0: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है। कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM।

107.1 FM पर आप सुन रहे हैं। फिलहाल दोस्तों बताना चाहता हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज कि अगले 30 सेकंड में अब आप सुनने वाले हैं ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 जो आज मैच है इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स का। तो बने रहिए, कहीं जाइए मत और लुफ्त उठाइए। खूबसूरत सा मैच जो होने जा रहा है अब इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स का। बाकी लिसनर्स बिल्कुल रेडियो आपके जरिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। तब तक सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

गुंडे फिल्म से गाना हम सुन रहे थे 107.1 FM पर एक्सक्लूसिवली शादा फरीदी और अल्तमाश फरीदी साहब की आवाज में, इरशाद कामिल साहब के लिरिक्स एंड सोहेल सैन जी की बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन। गुंडे फिल्म से ये गाना हम सुन रहे थे, मन कुन तो मौला। और आप सभी के सामने अब जो नेक्स्ट गाना आने वाला है वो है अदनान सामी जी की आवाज फ्रॉम द फिल्म बजरंगी भाईजान। सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

आई थिंक ओवर द ईयर्स अदनान सामी साहब ने कुछ बहुत ही अमेजिंग कॉम्पोजिशंस बनाई हैं, फिर चाहे वो उनकी शुरुआत की हो, लिफ्ट करा दे या तेरा चेहरा, ये जमीन रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन, क्या खूबसूरत लिरिक्स, क्या खूबसूरत रिदम, यू नो, हर एक गाने में, हर एक एल्बम में उनकी दिखाई दी. एंड आई थिंक अब जब फिल्मों में उनके हम खूबसूरत गाने सुनते हैं तो और अच्छा लगता है. काफ़ी पावरफुल रिदम इस गाने का भी, भरतो झोली फ्रॉम द फिल्म बजरंगी भाईजान. फिलहाल दोस्तों, इट्स 6:44 ऑन द क्लॉक, आप सुन रहे 107.1 FM. फिलहाल इस अंदाज़े बयां शो में, जिसको मैं सूफी आवर भी कहता हूँ, इसमें अब उस गाने का वक्त आ गया है जो अक्सर हम प्ले करते हैं इस आवर में, विच इज़ कुन फया कुन बाय ए आर रहमान साहब, जावेद अली साहब एंड मोहित चौहान. सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो.

वेलकम बैक दोस्तों, 6:53 हो रहे हैं 107.1 FM पर। आप जुड़े हैं मेरे साथ यानी कि आरजे राहिल के साथ। कुछ बहुत ही अमेजिंग गाने हम सुन रहे थे इस आवर में। बाकी एक और गाना है जो मैं प्ले करूंगा आप सभी के लिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके बाद कोई कहीं नहीं जाए, क्योंकि इसके बाद जो शो हो रहा है उसका नाम है हम तुम। जैसे कि शो का नाम है हम तुम, यानी कि मैं और आप मिलकर इस शो को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि आपके पसंदीदा गाने आप मुझे व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट करेंगे। चाहे गाने सुनने का मन कर रहा हो, किसी की एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो ज़रूर मैं हूं ना 8657661071 ये नंबर है। अगर मिस हो गया तो मैं दोबारा से कहता हूं, जल्दी से फ़ोन निकालिए और डायल कीजिए 8657661071। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फोन मेरे हाथ में है, इंतजार है आपके मैसेजेस का, जब आप मुझे बताएंगे कि आप क्या सुनना चाहते हैं अगले आवर में। ऑफ कोर्स बहुत सारी रिक्वेस्ट्स हुई तो एक साथ प्ले करना इस आवर में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए जल्दी से जल्दी फोन उठाइए और 8657661071 पर हमसे कनेक्ट कीजिए और हमें बताइए कि आप क्या सुनना चाहते हैं। फिलहाल इस अंदाजे बयां शो में, इस खूबसूरत से सूफी आवर में थोड़ा सा इश्क सूफियाना हो जाए तो फिर क्या ही कहने। सुनते रहिए 107.1 FM, मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे राहिल।

एकदम पार्टी वाला माहौल हो गया यहाँ पे 107.1 FM, ये चल रहा है हम तुम 7:22 पर एक्सक्लूसिवली आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आरजे राहिल को। एक गाना और प्ले करने वाला हूँ, लेट्स पार्टी नहीं लेट्स नाचो।

वेलकम बैक दोस्तों, 7:47 हो रहे हैं 107.1 FM पर। आप मुझे सुन रहे हैं यानी कि आरजे राहिल को। ऑफ कोर्स हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर हु जॉइंड अस। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट्स भेजी हैं, पर्सनली सॉरी बोलना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स वक्त की वजह से अनफॉर्चुनेटली हम ज़्यादातर रिक्वेस्ट्स नहीं प्ले कर पाए बिकॉज बहुत सारी रिक्वेस्ट थी और हमारे पास लगभग 50 मिनट होते हैं। बट कोशिश करेंगे अगले वाले शो में ज़रूर प्ले करने की। बट फिलहाल थैंक यू सो मच वंस अगेन टू एवरी वन प्रेजेंट हियर। एंड ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना, आप माँ बाप का ध्यान रखिए। एंड यस बिल्कुल, मैंने जो आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में बताया था, ज़रूर उनका ध्यान रखें। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज़ आरजे राहिल साइनिंग ऑफ। जाते जाते तीन खूबसूरत बैक टू बैक गाने आप सभी के लिए सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जल डमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के

0: में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।

0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
1: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
2: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहलें भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.go.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
5: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97

0: 96 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 रुपए पर बंद हुआ।
1: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa, and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence, and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1,200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chase target of 403 runs set by India in second ODI of 3-match series in Lucknow. A crucial bilateral meeting was held between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump at Evian, France, on the sidelines of G7 summit this evening. During the talks, issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figured prominently. Prime Minister Modi commended President Trump for the progress in peace efforts in West Asia. The Prime Minister said that India has consistently emphasized the importance of the freedom of navigation and all should work together to place a particular emphasis on it. Mr. Modi added that lakhs of Indian seafarers in maritime trade are on duty in different oceans of the world and their safety is of utmost importance to India.
3: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति

0: मैं हूं आपका दोस्त अर्ध के थांडा और आज हम आपको सीधे लेकर चल रहे हैं सिनेमा के उस महाकुंभ में जहां दुनिया भर की कहानियां अपनी कला का जादू बिखेर रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं 19th यानी कि 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी मिफ 2026 की, जिसका आगाज मुंबई में बेहतर शानदार तरीके से हो चुका है। दोस्तों, दक्षिण एशिया में गैर फीचर नॉन फीचर फिल्मों के इस सबसे पुराने और सबसे बड़े फिल्म महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गन ने सोमवार शाम को दादर के रविंद्र नाट्य मंदिर में किया। उन्होंने भारत को दुनिया की क्रिएटिव पावर हाउस यानी रचनात्मक महाशक्ति बनाने का आह्वान किया है। उद्घाटन के 3 दिन आज हो चुके हैं, आज है 17 जून, लेकिन अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की तो कनाडा के एनिमेशन फिल्म गुड लक टू यू ऑल, फिलीपींस के लघु कथा अगापेतो और आइसलैंड की डॉक्यूमेंट्री टाइम एंड वाटर ने दर्शकों का दिल जीत लिया। जहां तक हम बात करें, इस साल और भी कई सारी चीजें हैं। AI सिनेमा हैकाथॉन की अगर हम बात करें तो काबिले तारीफ है, जहां रचनात्मकता और आधुनिक तकनीक का एक अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। एक और कड़ी इसमें जुड़ी है, जो है वेव्स डॉक बाजार की। इसका दूसरा संस्करण 16 से 18 जून तक चलेगा, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माताओं को वैश्विक खरीदारों और सह निर्माण के बड़े अवसर दे रहा है। अगर हम बात करें रीजनल सिनेमा की तो रीजनल सिनेमा पर फोकस करेंगे। इस साल मराठी फिल्मों के लिए एक विशेष चयनित खंड भी रखा गया है। जी हाँ, एक विशेष चयनित खंड। अगर हम शुरुआत की बात करें तो द हाउस कीपर जो है ऑडी 2 के अंदर 10 बजे से जिसकी शुरुआत हुई है। ऑडी 2 के अलावा ऑडी 1 में, RR3 में और JB हॉल में भी इस समय फिल्मों का तांता चल रहा है। दोस्तों, कभी आप सुन रहे हैं केरला से, कभी आप सुन रहे हैं मुंबई से, तो कभी आप सुन रहे हैं नीदरलैंड से, कभी आप सुन रहे हैं चाइना से। अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानी, चाहे वो डायरेक्टर हों, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हों, चाहे वो फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट्स हों। और आज हमारे साथ एक और खूबसूरत सी हस्ती हैं जो शायद अपनी बातों के जरिए बता पाएंगी कि ये मिफ की दुनिया कितनी खूबसूरत है। मैनो, गुड नेम मैम।
1: इट्स टिशा।
0: टिशा, तो टिशा आप यहाँ पे पहली बार आई हैं मिफ में?
1: हाँ, मैं पहली बार आई हूँ।
0: तो मतलब आपने अभी यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ देखी आज के दिन में या कल के दिन में, क्योंकि आज तीसरा दिन है, उसके बारे में जो अभी सुन रहे हैं इस वक्त शो को, उन्होंने मिस किया है और वो शायद आने वाले कल या परसों में आके

0: आप बात करना चाहो।
1: हाँ, मैंने अभी एक फिल्म देखी थी, वो लव फिक्स के बारे में थी, और उसमें एक इंसान अपने लव स्टोरी के बारे में एक चैटबॉट से बात कर रहा था, और वो चैटबॉट उसको एकदम न्यूमेरिकल आंसर्स दे रही थी, विच वॉज नॉट लाइक रियलिस्टिक। तो इट शोड दैट देर इज़ लाइक अ वेरी ह्यूज गैप बिटवीन AI एंड ह्यूमन, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट an AI can't replace you, but it's also, it can help you do like smart work rather than hard work. So I feel like AI is very important. I myself, I'm here because I'm doing some research. So Hindi film industry itni badi hai, like Bollywood and everything. So I feel like it is very important to help this chaotic film industry become more like structured and organized. तो इसीलिए हम एक प्लेटफॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं फॉर द फिल्म मेकर्स, द क्रिएटर्स हु आर नॉट बीइंग एबल टू बी डिस्कवर्ड और यू नो शो देयर टैलेंट टू द राइट पीपल। तो हम वो दोनों डिमांड और सप्लाई साइड के गैप को ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ सिर्फ 3 दिन के लिए अटेंड करने आई थी, ज़्यादातर लोगों के पेन पॉइंट्स जानने के लिए कि उनको क्या तकलीफ होती है इस फिल्म इंडस्ट्री में, तो उनके प्रॉब्लम्स सुन के मे बी हम उनकी हेल्प कर सके हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम आर्टिस्टी है, इट्स स्टिल इन द मेकिंग।
0: हमारे साथ में है औष्मिता, और आपकी फिल्म वेस्ट डॉग बाजार के अंदर सिलेक्ट भी हुई है, उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस।
2: द एक्सपीरियंस हैज बीन रियली गुड। वी हैड अ पिचिंग सेशन यस्टरडे, आई गॉट सम वेरी पॉजिटिव फीडबैक, एंड आई हैव बीन हैविंग मीटिंग्स विद सम प्रोडक्शन हाउसेज एंड बायर्स। द नेम, बंगाली नेम ऑफ माई फिल्म इज टुकड़ो टुकड़ो पृथ्वी, द इंग्लिश नेम इज अर्थ पीसेज।
0: तो मतलब अगर देखा जाए तो मिफ ने जो ये मुहिम शुरू करी है वेव्स डॉग बाजार की, जिसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्री क्रिएटर्स हैं, शॉर्ट फिल्म क्रिएटर्स हैं, उन्हें एक फाइनेंशियल फंडिंग मिल जाए, वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
2: आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, इट्स वेरी नेसेसरी, बिकॉज बाहर के फेस्टिवल्स में काफ़ी इंडिया से फिल्में जाती है, सो इट्स टाइम दैट वी हैव अ नेशनल फंडिंग सिस्टम फॉर द डॉक्यूमेंट्रीज टू बी मेड इन इंडिया।
0: आपकी फिल्म के अलावा तो उसमें ऐसी कोई फिल्म जो आपको बहुत पसंद आई हो?
2: या आई वॉच्ड अ फिल्म टुडे, इट वॉज कॉल्ड द एंशिएंट फॉरेस्ट, इट्स अ फिल्म फ्रॉम रशिया, एंड इट्स अ वेरी लाइक सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ अ फॉरेस्ट व्हिच हैज नॉट बीन डिस्टर्ब फॉर सेंचुरीज।
0: दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी हस्ती, और ये हस्ती हैं चाइना से। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली, चुआन यिंग लियाओ, या the director of The Hoarders. Could you please let me know more about the film which you have been directing for so far, and about this film?
3: Oh, it's my graduation thesis, and the story is about my husband and I, and it's adapted from the real story, but of course we just some part of it is fiction, but the film, most of all, I want to emphasize that is we sometimes will see the outlook or the things, but we will forget about the things underneath the reality. For example, the hoarder, my husband is a hoarder, and we often had quarrel about this, but one day after I have a consultation with a therapist, and she said that your husband hold because he has something that is unsatisfied when he's a child. So I just could realize why he hoards, and then we have fewer arguments. But so far, the question is still go on. It's still hard for us to solve the problem of hoarding, because it's kind of like a psychological problem. Yeah, but we are just hanging together to solve the problem.
0: दोस्तों, काफिला बना हुआ है, एक तरफ कोलकाता है, कभी ओडिशा है, और कभी दिल्ली है, और कभी नीदरलैंड है, कभी स्विट्जरलैंड है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कौन कौन सी कंट्री से कहाँ कहाँ से डेलीगेशन आ रहे हैं, और कहाँ कहाँ से लोग अपनी फिल्मों को लेकर आ रहे हैं। और अभी हमारे साथ में है संजय गोस्वामी, जो बहुत ही खूबसूरत कलाकार हैं, और अपनी खूबसूरत फिल्म के साथ में यहाँ पर हैं, जिसमें उन्होंने एक्टिंग करी है। हाय संजय।
4: हेलो हेलो हेलो खम्मा गणी,
0: क्या बात है।
4: हमारी तो काफ़ी डाइवर्स फिल्म थी, क्योंकि हमारे डायरेक्टर जो थे वो मलयालम थे, और एडिटर्स दिल्ली से थे, सम FTII से थे, क्योंकि ये CMOT का जो कंपटीशन होता है, इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग सेलेक्ट होते हैं, इवन नॉर्थ ईस्ट से लोग थे, सो मिक्स था। तो बट हमने बनाई हिंदी में फिल्म है, और हमारी फिल्म का नाम है खाली खोपड़ी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे एक फ्रेंड है अनिरुद्ध, उन्होंने लिखी थी ये, जो FTII से है जी।
0: तो मतलब जैसा

0: आपने कहा काफी अलग अलग तरह से जो है फिल्मों में लोग जुड़े हैं और आपने जो एक मुकम्मल फिल्म बनाई है, तो आपकी फिल्म अपने आप में पूरी मिफ है, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। लेकिन मैं कहूँगा अपने देश के अलग अलग कोनों से आपने जो है लोगों को इसमें, मैं कहता हूँ, डायरेक्टर इकट्ठा किया, चाहे वो राजस्थान से हों, चाहे वो आपने बताया मलयालम इंडस्ट्री से हों, या यूँ कहूँ कि मलयालम बोलने वाली एक भाषा वाले प्रांत से हों। तो आप भी बताइए, आपने इस फिल्म के अंदर जो काम किया है उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या है?
1: ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, क्योंकि जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया है वो नॉर्मल लाइफ में लाइक मैंने गॉड का कैरेक्टर प्ले किया है, लाइक ही हैज़ सुपर पावर्स इन दैट। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग था प्ले करना, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स मिलते नहीं हैं एक्टर्स।
0: आप लोगों ही जो खोपड़ी वो खाली करते हैं क्या इसमें, जैसे खाली खोपड़ी फिल्म का नाम है?
1: नहीं, मुझे लोग खाली खोपड़ी बोलते हैं, बट लेटर पीपल रियलाइज दैट ही कंट्रोल सन, जो सूरज है उसको कंट्रोल करता है। और एक दिन वो इतना गुस्सा हो जाता है कि सूरज को रोक देता है आने से, और दिन नहीं हो पा रहा होता है। तो एक इंसान होता है जिसको वो बाद में गाइड करता है कि सबको अपना अपना सूरज खुद ढूंढना चाहिए, तब अपने आप सूर्योदय हो जाएगा।
0: वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल ओवर हियर, व्हाट्स योर गुड नेम?
2: अमांडा जेन रॉबिन्सन।
0: So Amanda, I would like to ask, today is the third day of the Mumbai International Film Festival, and you have seen multiple of films, if I'm right?
2: Yeah, there was one. So one short film program was 2 hours yesterday afternoon and played 4 short films. So we've seen 4 so far, more this afternoon.
0: And which one is your favorite?
2: Oh, that's such a good question. Maybe, oh, it's a hard one. There was some cool, I think After the Cat.
0: After the Cat. So like, what do you say to the people like from India who look after the cinema in your country?
2: Oh, thank you. Yeah, it's who look after Indian cinema in our country? Yeah, I mean, I work a little bit for the New Zealand International Film Festival, and we've had some Indian films play there in the last couple of years, which are beautiful. All We Imagine Is Light, the Payal Kapadia film, and Cactus Pears as well. And then I saw another, I think a Tamil film called Stolen last year maybe. So yeah, we love Indian cinema. I want to just see more.
0: And what do you see about in the upcoming days?
2: We're just seeing lots of films and meeting some filmmakers. I am heading off now to meet some of the jury members, the international jury. So yeah, just enjoying the atmosphere of the film festival.
0: And what about the DocuBazaar, if you heard about it? Do you know about it? Like,
2: yeah, I've heard about it. I think we're mostly just going to watch some films, but a lot of them are documentaries or documentary shorts as well.
0: So which one is your favorite, like documentary films or the animation films or the AI films?
2: The documentary films. I love the documentary films. Yeah, documentary and short fiction films as well, I like.
0: And you're herself a documentary creator or something?
2: Yeah, I'm directing a documentary, and then I produce a little bit as well, so producing some short films and both not documentary and fiction.
0: मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में एक और बड़ी ही खूबसूरत सी फिल्म जिसका नाम है गिरमिट, मैंने सही नाम लिया ना सर?
3: जी, गिरमिट द फील्ड ऑफ सैडनेस।
0: क्या बात है, श्याम उपाध्याय जी की आपने आवाज़ सुनी, जो इस फिल्म के निर्माता भी हैं, निर्देशक भी हैं।
3: जी कैथ, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके रेडियो के लिए कुछ बोलूं अपनी फिल्म के बारे में, और हमारी फिल्म को एक थोड़ा समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लिसनर्स जो मुझे सुन रहे हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये जो फिल्म है गिरमिट के बारे में इंडिया में अभी तक लोगों को इतना पता नहीं है, क्योंकि गिरमिट एक ब्रोकन वर्ड है इंग्लिश के वर्ड एग्रीमेंट का। 1879 से लेकर 1920 तक कुछ 1.6 मिलियन इंडियंस को यहाँ से ब्रिटिश लोग लेकर गए थे, फिजी, न्यू गयाना, ऑल डायस्पोरस कंट्री। तो उस समय उनके साथ एक 5 साल का एग्रीमेंट साइन करते थे, तो वो एग्रीमेंट बोल नहीं पाते थे, क्योंकि सारे जितने लोग लगे थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, गाँव से थे, तो वो वर्ड को, एग्रीमेंट को वो गिरमिट बोलने लग गए। तो वो इस तरह एक वर्ड हो गया गिरमिट, और उनको अपने आप को वो लोग गिरमिटियाज बोलते हैं। तो ये फिल्म पूरी उनकी जर्नी, मतलब उनको जो फिजी ले गए और उनके साथ क्या क्या हुआ वहाँ पर, ऐसा मतलब उनकी जो लाइफ थी, मतलब जो सेक्रीफाइस उन्होंने किया है, जो स्ट्रगल उन्होंने किया है वहाँ पर, जो उनके साथ अत्याचार हुए हैं सारे, ये फिल्म उसके ऊपर है। और ये चीज़ पूरे ये 40 साल जो है पूरी इंडियन हिस्ट्री में कहीं नहीं है, ये एक हाइड कर दी गई है हिस्ट्री, इस पर फिल्म बनी है।
0: मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में एक से बढ़कर एक देश दुनिया की आज फिल्मों का तांता लगा रहा, चाहे ऑडी 1 की बात करिए, ऑडी 2 की बात करिए, या फिर जेबी हॉल की, या फिर RR3 की। इसके साथ में आज बहुत ही खूबसूरत सी वर्कशॉप्स भी हुई, मास्टर क्लासेस भी हुई, और इस पूरी रिपोर्ट में जो टेक्निकल सपोर्ट रहा वो रहा कल्याण जी का, प्रोडक्शन टीम से गुरुनाथ तेरवंकर जी का, रोशन यादव जी का, और प्रोड्यूसर राजकुमार भारती जी का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमियो में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
2: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप

0: आकाशवाणी।
1: बहुत बहुत इस्तकबाल आपका, रंगे महफिल लेकर हाजिर हूँ मैं जरीन। प्यार एक ऐसा लफ्ज जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ला देता है। कभी ये हमें हंसाता है तो कभी हमारी आंखों को नम कर देता है, लेकिन सच कहूँ तो प्यार ही वो चीज़ है जो इस दुनिया को खूबसूरत बनाती है।

कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और गालिब गजल के सरताज थे और हैं। उनका कलाम आज भी उतना ही ताजा लगता है जितना उनके अपने दौर में था। उनका मुहावरा और बयान आज के दौर में भी मॉडर्न लगता है, इसलिए गायकों के लिए गालिब सदाबहार हैं। वो किसी भी लिबास में सज जाते हैं। जगजीत ने उन्हें मॉडर्न ऑर्केस्ट्रा के साथ रिकॉर्ड किया।

0: आंख से आंख मिलाता है कोई, दिल के बंद दरवाजों को खटखटाता है कोई, बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने खामोश निगाहों से बहुत कुछ जताता है कोई। कभी कभी कुछ रिश्ते लफ्जों से नहीं नजरों से बनते। एक नजर में अपनापन, एक मुस्कान में सैकड़ों बातें और एक मुलाकात में पूरी कहानी छुपी होती है। अगली गजल लता जी की आवाज में आप तक पहुंचा रहे हैं।
1: जिनके लिए कुछ कहना बहुत मुश्किल होता है, जैसे आप समझ गए ना, लता मंगेशकर। लता जी जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक फिनोमिना है और इस सदी के लिए एक रूहानी सौगात है।

आप सुन रहे हैं रंगे महफिल जरी के संग। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब चारों ओर भीड़ होती है मगर दिल किसी एक शख्स की कमी महसूस करता है। तब लगता है कि दुनिया की सारी रौनकें फीकी हैं, क्योंकि सुकून तो एक उसी के साथ मिलता था और कुछ गजलें ना सीधे दिल को छू जाती हैं।

रात की खामोशी में चांद की हल्की रोशनी में जब दुनिया धीरे धीरे नींद की आगोश में जा रही होती है तब कुछ यादें चुपके से दिल का दरवाजा खटखटाती हैं। आपको पता है ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है और इश्क उससे भी ज्यादा। कहते हैं कि इश्क वो किताब है जिसे हर कोई पढ़ना चाहता है मगर समझना कुछ लोग ही पाते हैं। मोहब्बत कभी एक मीठी धुन की तरह होती है तो कभी किसी अधूरी गजल की तरह, जिसके अल्फाज तो होते हैं मगर मानी कहीं खो जाते हैं। याद है आपको वो पहला लम्हा जब किसी की एक मुस्कान आपकी पूरी दुनिया बदल देती है, जब किसी की आवाज़ शोर में भी सुकून बन जाती है। और ऐसा ही होता है जब किसी ख़ास शख्स की यादें आपके दिलो दिमाग में बसी होती हैं। लगातार हमारे पास संदेशे आ रहे हैं, उसी में ये संदेश आया नोएडा से कशफी शमाइल। जी हाँ, कशफी का आज जन्मदिन है तो पूरे एफएम रेनबो इंडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ अता करे, सेहत बरकत और कामयाबी अता फरमाए। हर आने वाला दिन आपके लिए रहमत और मुस्कुराहट लेके आए। आपके लिए ये बहुत ही प्यारा सा गज़ल पेश कर रहे हैं।

तो कशफी शमाइल, जी हाँ, आज यौमे पैदाइश की मुबारकबाद ढेर सारी आपको। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, सेहत और बरकत और कामयाबी अता फरमाए। हर आने वाला दिन आपके लिए रहमत और मुस्कुराहट लेकर आए, खूब सारी खुशियाँ आपकी झोली में भरे। एफएम रेनबो इंडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक आपको।

जी हाँ, जब दिल मजबूर करता है तो इस तरह से बुलावे तो भेजने ही पड़ते हैं। और रात की खामोशी में, चांद की हल्की रोशनी में, जब दुनिया धीरे धीरे नींद की आगोश में जा रही होती है, तब कुछ यादें ना चुपके से दिल का दरवाजा खटखटाती हैं।

जी हाँ कश्फी, और हमारे तमाम लिसनर्स आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी में इश्क और मोहब्बत ज़रूर एक बार करिए, क्योंकि ये इश्क वो किताब है जिसे हर कोई पढ़ना चाहता है मगर समझ कुछ लोग ही पाते हैं। जब किसी की एक मुस्कान आपकी पूरी दुनिया बदल देती है, जब किसी की आवाज़ शोर में भी सुकून बन जाती है, तब उसी का चेहरा हर वक्त आँखों के सामने आता है ना।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
5: ठीक है,
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
3: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
7: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
8: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
7: अल्फा जेन,
8: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
9: कोयल सी तेरी बोली।

0: आए हाय, तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
4: 11:51 हो गए हैं स्टूडियो की घड़ी में।

कई बार कहानी खत्म हो जाती है, किस्से बीत जाते हैं, मगर कुछ अल्फाज बाकी रह जाते हैं जो हम कह नहीं सकते। वो जज्बात बाकी रह जाते हैं हमें, एक अधूरे इश्क की मुकम्मल सी यादें बाकी रह जाती हैं हमें।

0: जिनमें टूटे ख्वाबों के भी निशान शामिल होते हैं। इस खूबसूरत गजल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि अगली दफा आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी रंगे महफिल प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज, शब खैर।
1: शाम से

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियाओं में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की तथा व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। श्री मोदी ने कहा कि भारत सदैव शांति के पक्ष में रहा है और मानवता के मूल्यों को सर्वोच्च मानता है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ भी बैठक की। इस बीच G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इन घोषणाओं में संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। भारत ने बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल से जुड़ी घोषणा का समर्थन किया है। पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडप का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एनेली हेनाफ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में आज शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
2: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 114 रन पर आउट हो गई। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: और बीच के दौर के गीत, प्रोग्राम रहेगा जीरो आर शो।
1: गोपी, क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो? हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
2: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम। ताली भी पिट जाएगी और ठाकुर का पैसा भी बच जाएगा। चलो।

0: मर जावा गुड़ खा के।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मैं

0: गुड मॉर्निंग छोड़ गुड मॉर्निंग छोड़ हाथ
1: गुड मॉर्निंग 1 2 3 4
0: अरे 1 2 3 4 मैं कैसे
1: अरे 1 2 3 4 1 2 3 4
0: तुमके थप्पड़ रखे
2: आवर के डाबर
0: डाबर
2: डाबर डाबर डाबर
0: अरे बड़ा आया अंग्रेजी बोलने वाला
3: कॉफी दस वाट वाटर सैंड राइट हैंड बंदूक बैंड टिंग फटा

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: कहिए, क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमिया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में

0: शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। श्री मोदी ने कहा कि भारत सदैव शांति के पक्ष में रहा है और मानवता के मूल्यों को सर्वोच्च मानता है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ मुलाकात की। पश्चिम एशिया की स्थिति और यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाओं के बारे में भी चर्चा की। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ भी बैठक की। G7 शिखर सम्मेलन के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सुरक्षित, समावेशी और मानव हित में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि AI शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन बच्चों को गलत सूचना, डीप फेक और साइबर खतरों से बचाने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय जरूरी हैं। इस बीच G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई हैं। इन घोषणाओं में संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडप का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एनेली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में आज शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 रेलवे स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देशभर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में होगा। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 114 रन पर आउट हो गई। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: 1:05 और 43 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम सुहानी रात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

सगरे गाँव की गोरिया कुछ कुछ मैं छोड़ रहा।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं, नमो ऐप या

MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पेरिस पहुंच गए हैं। 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया और कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता तथा यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी

मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की तथा व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में वीवा टेक शिखर सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी है। गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी गई है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए एआई और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 213,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास दिए जाने को प्राथमिकता दी जा रही है। FIH प्रो लीग हॉकी मुकाबले में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। इस मैच में मनप्रीत सिंह ने अपना 413वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलकर भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। फीफा विश्व कप 2026 में ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल और डीआर कांगो के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। पुर्तगाल के लिए जोआओ नेवेस ने 6 मिनट में गोल किया, जबकि डीआर कांगो ने योआने विस्सा ने पहले हाफ के अंतिम मिनट में बराबरी का गोल दागा। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप मैच शुरू करने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड की टीम 114 रन पर आउट हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: 2:05 और 40 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम भुलाए ना बने।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान दी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पेरिस पहुंच गए हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया और कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो क्रोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं

0: ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की तथा व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री आज पेरिस में वीवाटेक शिखर सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद भी करेंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
1: दो प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। थर्ड प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर फोर्थ प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। फीफा विश्व कप 2026 में ग्रुप एल के मुकाबले में इंग्लैंड क्रोएशिया से 3-2 से आगे है। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। वहीं ग्रुप के में पुर्तगाल और DR कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मुकाबले में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। इस मैच में मनप्रीत सिंह ने अपना 413वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलकर भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। चीन के गुयांग में चल रहे विश्व मुक्केबाजी कप में भारत के निखिल, दीपक और स्नेह ने अपने अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिला T20 विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पेरिस पहुंच गए हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया और कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की तथा व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री आज पेरिस में वीवा टैंक शिखर सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी संवाद करेंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली को आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493

0: करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। श्री वैष्णव ने पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही।
1: दो प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। थर्ड प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर फोर्थ प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री।
0: श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की भी घोषणा की। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए एआई और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने एजेंसियों को राज्यों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया ताकि प्रत्येक कॉल को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाया जा सके। फीफा विश्व कप 2026 में ग्रुप एल के मुकाबले में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया है। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। वहीं ग्रुप के में पुर्तगाल और डीआर कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मुकाबले में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। इस मैच में मनप्रीत सिंह ने अपना 413वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलकर भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड की टीम 114 रन पर आउट हो गई। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी रिनबू पर अब उछला है वक्त आपके पास लेकर आने का हमारा एक और कार्यक्रम जिसका नाम है सारेगामा। तो आइए सुनते हैं सुरों की इस लहरी को इस कार्यक्रम के माध्यम से।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को

0: आकाशवाणी करता है सलाम, इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।